0: Navigating life in big cities. In the emotional clip, Vibhu Trivedi reflected on ambition, loneliness, and the hidden emotional cost of urban success while announcing that he was leaving the city forever. Social media users called the video painfully relatable for anyone chasing dreams away from home.
1: सब मतलब क्या है? यह कह लो कभी न खत्म होने वाले लूप का एक हिस्सा है. भाई दिन काम करो, वीकेंड में आराम करो, सैलरी का वेट करो उस माचिस की डिब्बी बराबर फ्लैट की ईएमआई भरने के लिए जो बुढ़ापे में शायद तुम्हारा जाके होगा. मुझे फालूदा खाना पसंद है. एक दिन फालूदा वाले से पूछा कि बहुत पैसे अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे सबसे पहले. तो उसने बोला, भैया सबसे पहले मैं अपने गाँव जाऊंगा. उस दिन समझ आया कि इंसान पैसों का नहीं अपनों का भूखा है. इसलिए आज हमेशा हमेशा के लिए नोएडा को अलविदा बोल रहा हूँ. इस डिसीजन से मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन अपनों से मिलने के लिए अब त्योहारों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
2: There's another 104 days of summer vacation and school comes along just to end it.
0: The internet is convinced one American neighborhood may secretly be home to real life Phineas and Ferb after a man spotted his neighbors casually driving around in a fully functional bed on wheels. The bizarre invention instantly reminded viewers of the cartoon's chaotic summer vacation energy, with users joking that the only thing missing was Candace desperately trying to expose them to their mother.

0: Football match. Now, the wider clip shows aesthetic supporters storming the pitch, waving flags and celebrating wildly.
1: The energy was high. People were extremely excited to see a foreigner attending the game and rocking the East Bengal flags. Quite literally, no tourists ever attend these games. Long story short, East Bengal won, league champs for the first time in 22 years.
0: For many viewers unfamiliar with Indian football culture, the scenes were a reminder that passion for sports runs deep.
1: If people were genuinely praying on the pitch, that's how much this shit meant to them. There was so much energy. Everyone was coming up to me, shaking my hand, screaming in my face and asking for photos.
2: आजकल 30-35 साल के बच्चे शादी से नहीं गलत चॉइस से डरते हैं.
0: Veteran creator Vinod Kumar Sharma has sparked discussion online after sharing why he believes many young people are delaying marriage. According to him, the issue is not lack of interest but growing fear of choosing the wrong partner. His video has triggered thousands of reactions, with users debating whether modern relationships have become more complicated than ever.
2: Partner or decision सही होना चाहिए. इसीलिए ये डिले नहीं, ये गलती से बचने की चॉइस है. बच्चों याद रखना, गलत इंसान के साथ जल्दी करने से अच्छा है सही इंसान के लिए थोड़ा लेट हो जाए.
3: That off campus viral video happened.
4: Oh my god. I mean, listen, the show is so cute and I love it. And
0: J-Lo has now gone viral after praising the popular series Off Campus and its star Meeka Abdullah.
4: After 15 years,
0: in a widely shared clip, J-Lo described the show as so cute and revealed that she loved watching it.
4: I mean, listen, the show is so cute and I love it. And
0: fans quickly flooded social media with reactions, calling the endorsement a huge moment for the series and its growing fan base.
4: Years, like, when does that ever happen? Like,
5: give us sake up. जो वेपन है वो पेस है और स्विंग भी है.
0: अ लोकल क्रिकेट मैच हैज अनएक्सपेक्टेडली प्रोड्यूस्ड द इंटरनेट्स न्यूएस्ट कमेंट्री सेंसेशन.
5: पूरे अपने करियर में
0: अ वायरल वीडियो शोज अ मैन डिलीवरिंग हाई एनर्जी कमेंट्री विद प्रोफेशनल लेवल एक्साइटमेंट.
5: ओ गुडनेस मी.
0: एनालिसिस एंड वॉइस मॉड्यूलेशन.
5: पहली का की गति का वो इस्तेमाल करते हैं ऐसे में साजिद डार.
0: व्यूअर्स कंपेयर्ड हिम टू टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स एंड डिमांडेड बिगर अपॉर्चुनिटीज फॉर हिम, प्रूविंग दैट टैलेंट कैन इमर्ज फ्रॉम द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री.
5: समय लेना होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी भी ओवर छोड़ के अगर देखे तो 15 ओवर का खेल बचा है.
6: इनको जानते हैं आप, ये है बटर मैडम. हमारे इंडिया में स्ट्रीट
0: डॉग. An indie dog named Butter is melting hearts after her owner shared the story of their adventure across India and Nepal.
6: Butter एक लौती डॉग है जिन्होंने 15,000 किलोमीटर मेरे साथ इंडिया पैदल ट्रैवल किया. और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली बटर वो पहली इंडी स्ट्रीट डॉग बनी है जिसने अन्नपूर्णा बेस कैंप का सबमिट किया है.
0: Butter has reportedly traveled over 15,000 kilometers and completed the Annapurna base camp track.
6: जिसे हम गली में यूं ही मरने के लिए छोड़ देते हैं. क्यों?
0: The viral post is encouraging people to adopt indie dogs while challenging long-standing stereotypes about street dogs being less capable than pedigree breeds.
6: ये best of the best है. और मैं finally यही कहना चाहूँगा कि यार dogs की shopping मत करो, उन्हें adopt करो. एंड स्पेशली हमारे इंडीज को एक नया घर दो, बिकॉज वो सिर्फ कोई गली का कुत्ता नहीं बल्कि दे आर द बेस्ट ब्रीड्स इन द एंटायर वर्ल्ड.
0: Chinese man has stunned social media after reaching his flood-stranded car using a handstand. In the viral video, he walks across a waterlogged stretch on his hands before sliding directly into his vehicle without getting wet. Viewers praised the creativity and balance, calling it one of the smartest flood hacks ever captured online. Adventure has gone viral after reportedly traveling from Kerala to Nepal on a unique single-wheel style bicycle. The unusual journey has amazed social media users, who praised his determination and adventurous spirit. The clip has sparked curiosity about the unconventional cycle and inspired viewers about the idea that extraordinary journeys can begin in unexpected ways.

0: कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।
1: राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया है, उन्होंने EVM को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है, राजनीति कर सकते हम लोग अभी, इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बड़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में ये हम सबको अपील करते हैं।
2: द लीडर्स फाइट व्हाइल द यूथ स्ट्रगल, वेट फॉर अ क्रेडिबल मार्क टू बिल्ड देयर फ्यूचर ऑन। The neatly gate is still brewing, with CBI investigation going on who, how, when and where. The medical entrance examination question paper got leaked. Though in Parliament panel hearing, exam conducting body NTA claimed it was not leaked through their system. Yet, that crack in that system killed lives. Killed dreams. Year-old NEET aspirant allegedly died by suicide in Rajasthan's Sikar. He was depressed over the leak gate leading to cancellation of the exam. There are other cases of similar desperate attempts. But politics takes its own course. Investigations go on. Students wait. For cleanup of the education mess.

0: निजी रूप से आपको सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चिंता हो रही है? हमने देखा कि बहुत जल्दी डेट आपने दिया नीट री एग्जाम के लिए, क्या व्यथा थी मन में? जिसके
1: मन में ये व्यथा भी तो थी और दायित्व भी था, हमने उसी दिन भी कहा था हमारा दायित्व बनता है, एक भी सही विद्यार्थी के हक नहीं हनन होनी चाहिए शिक्षा माफियाओं के लिए, परीक्षा माफियाओं के लिए। समाज में एक कुप्रथा आ चुकी है, कुछ लोगों की पैसे की ताकत में वो चाहते हैं, वो मन उनका मन में आ गया है, हम व्यवस्था को तोड़ पाएंगे, व्यवस्था का हमने गेम कर सकते हैं, उन्होंने किया उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये कुप्रथा है, सोशल इविल है, उसमें एक बड़ा व्यापक जन जागृति करके आखिर इसमें पैसा कौन खर्चा करता है? कुछ पेरेंट्स तो खर्चा करते हैं, कुछ बच्चों के मन में लोभ तो आता है कि मेरी योग्यता हो ना हो लेकिन मैं एंट्री कर जाऊं, इसलिए वो इस शॉर्टकट और रास्ता ढूंढते हैं ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी था कि एक भी सही विद्यार्थी का हक मारी ना हो, इसलिए हमने इसको

स्वीकार किया। नेतृत्व ने उसको तुरंत फैसला किया कि उसको री एग्जामिनेशन करे, सीबीआई को सौंप दिया जाए। सीबीआई तेजी से, मेरा सीबीआई पे पूरा भरोसा है। मैं तो सीबीआई से ये भी अपेक्षा करूँ, मैं माननीय गृह मंत्री जी को ये भी अनुरोध किया हूँ कि इसकी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, सीबीआई ऐसे ही एक स्पेशल कोर्ट है लेकिन इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, जो दोषी पाए जाए उसको दृष्टांत मूलक उनके ऊपर कार्रवाई होने से समाज में कुप्रथा बंद होने का थोड़ा प्रयास हम करेंगे।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds
2: with artists like James Bay, come on, let it go.
1: Norah Jones, Daniel Caesar, and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
3: जिस तरीके से सीबीएसई आज एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है और ये समझ नहीं आ रहा है, अभी तक देश के शिक्षा मंत्री छात्रों के सामने आके बात नहीं कर रहे हैं, केवल प्रिंसिपल्स को एक टूलकिट दिया गया है कि आप जाइए, ओएसएम की प्रणाली कितनी अच्छी है इस पे वीडियो बनाइए और छात्र छात्राओं से भी वीडियो बनवाइए। मैं ये कहना चाहूंगा, ओएसएम प्रणाली इसलिए लाई गई है कि कुछ शिक्षा मंत्री और उनके लोग शामिल हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस का काम था। जो पहले से ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी उसका नाम बदल के उसको जो है ये 20 सेशन के अंदर, चलते सत्र के अंदर टेंडर देना, ये समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं जेब भरने का काम है। आज लाखों विद्यार्थियों के जीवन को, भविष्य को अंधकार में डाल दिया गया है। सरकार उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं कर रही है, सीबीएसई पे कोई बातचीत नहीं है कर रही है, उसके फेल्योर पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। एनएसयूआई साफ मांग कर रही है कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों का साफ कहना है कि हमारी कॉपियां चेक ही नहीं हुई है, और चेक की गई तो गलत चेक की गई, मार्क्स गलत चढ़ाए गए, उसके अलावा जो स्कैनिंग प्रॉपर नहीं है और अलग अलग तरीके की अलग अलग समस्याएं हैं। इससे छात्रों को फाइनेंसेस और मेंटली लॉसेस हुए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? कब तक भारत के एजुकेशन सिस्टम को जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जाएगा?